ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है, अब सुनेंगे समाचार
2: के साथ मैं मुकेश कुमार।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
4: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे की 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 51। मुख्य गायक स्वर है लक्ष्मी शंकर के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

माया नगरी के राजा शील्दी के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे राजी उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने उनका उचित अर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6:15 हो रहे हैं। सुविचार।

जिसके हृदय में परमात्मा का वास होता है उसे जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं ईश्वर उसके हर कदम पर मार्गदर्शक बनकर साथ चलते हैं।

इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। श्रोताओं, आज गुरुवार है, इस दिन हिंदी फिल्मों से ली गई भक्ति रचनाएं प्रसारित की जाती है, तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

आदि पुरुष से सुनी आपने ये भक्ति रचना। अगली भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की और गीत की बोल है सिद्धार्थ गरिमा के।

ये भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं फिल्म लगान से। आवाज़ है लता मंगेशकर और गीत की बोल है जावेद अख्तर के।

कार्यक्रम वंदन में अगली भक्ति रचना सुने श्रोताओं, फिल्म पीके से। आवाज है सोनू निगम की, गीत की बोल स्वानंद किरकिरे के और संगीत है शांतनु मोइत्रे का।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, और अगली भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं फिल्म ओह माय गॉड से, और आवाजें हैं कैलाश खेर और मीत प्रोज की, गीत की बोल कुमार के।

वंदन में आखिरी भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं, फिल्म केदारनाथ से। आवाज़ है अमित त्रिवेदी की और गीत की बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर की सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे की 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुने श्रोताओं, फिल्म आपकी कसम से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, और गीत की बोल है आनंद बख्शी के।

फिल्म संगीत का ये गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म लम्हे से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, एला अरुण और साथियों की, गीत की बोल आनंद बख्शी के, संगीत शिव हरि का।

फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म खुदकर से, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की, गीत के बोल इंदिवर के और संगीत राजेश रोशन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

हर सुबह एक नई कहानी लाती है, जिंदगी को फिर से मुस्कुराना सिखाती है। भूल जाए कल के बीते सारे गम, हर नया दिन एक नई उम्मीद जगाती है। जी हाँ दोस्तों, 7 बजने के साथ ही हाजिर हो गए हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जहाँ बातें आपकी और हमारी और साथ खूबसूरत से नगमों का। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस पहले गीत के साथ।

दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सबका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और बात अगर हम हमारे आज के जीवन की करें तो जी हाँ, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। और उन्हीं चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बन चुका है वो है हमारा सोशल मीडिया से इंटरेक्शन। जी हाँ, सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को बहुत गहराई से बदल दिया है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। जी हाँ, यह दुनिया भर में जो त्वरित संचार और सूचना का एक बेहतरीन साधन तो है ही, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से कई सारी प्रॉब्लम्स भी आजकल हम सभी फेस करते हैं। तो बात आज इसी की तरफ करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल के लिए ये म्यूज़िकल ब्रेक।

दोस्तों, बात हम सोशल मीडिया की कर रहे हैं, और जहाँ सोशल मीडिया की बहुत सारे फ़ायदे आज हम देखते हैं, जैसे कि वैश्विक संपर्क जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, दूर बैठे परिवार या दोस्तों से जुड़ना बहुत आसान हो चुका है, सूचना और ज्ञान में भी बहुत सी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, व्यावसायिक अवसर भी हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। AI के माध्यम से जो काम बहुत मुश्किल होते थे वो बहुत ही आसानी से और कुछ मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जी हाँ, जिन्हें जो है हमें समय रहते पहचान लेना चाहिए। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी इनके साथ जो है वो हमारे तक पहुंचती हैं, जैसे लत और समय की बर्बादी, जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डालती हैं, और साथ ही साथ कई सारी गोपनीयता का खतरा भी रहता है, जिसे हम फ्रॉड या साइबर फ्रॉड्स के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं की तरफ जो है अवेयर रहना बहुत ज़रूरी रहता है।

दोस्तों, बात हम सोशल मीडिया की कर रहे हैं, और जहां आपको लगे कि सोशल मीडिया पर आपका जो समय है वो ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, या फिर आपको एक एडिक्शन यानी कि लत की तरह अगर महसूस हो रहा है, तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय जो है वो यही है कि कुछ समय के लिए आप सोशल डिटॉक्स कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब है एक निश्चित समय के लिए सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट से पूरी तरह दूरी बनाना। जी हाँ, इसका उद्देश्य जो है वो स्क्रीन टाइम को कम करना, मानसिक तनाव को दूर करना और असल ज़िंदगी पर ध्यान केंद्रित करना है। सोशल डिटॉक्स या फिर कहें ई फास्टिंग बहुत ज़रूरी भी है कुछ समय के लिए, और इसके बहुत सारे फायदे और कारण भी हैं। इसको करने से तनाव में कमी भी आती है, एक एंजाइटी या कहीं सोशल मीडिया की लत को कम करने में ये आपकी बहुत मदद करता है। साथ ही बेहतर नींद के लिए भी ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। रात को फ़ोन के इस्तेमाल से बचने से नींद में की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में भी यानी कि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। बचे हुए समय का उपयोग आप कुछ अच्छे काम में जैसे कि किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, नई स्किल्स को सीखने के लिए कर सकते हैं। और इसको करना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप जो ये ई फास्टिंग है या फिर सोशल डिटॉक्सिंग है वो आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे 24 घंटे कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 30 दिन तक कर सकते हैं। शुरुआत में फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर भी ऑन कर सकते हैं।

दोस्तों, बात हम सोशल डिटॉक्स की कर रहे हैं, तो एक प्रश्न ये भी है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने की ज़रूरत क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दौर में सोशल मीडिया पर चलती हैं, जिसका सीधे तौर पर या कहें कि अदर तरीके से भी जो है वो कोई आपसे कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट उन सारी चीज़ों में हम खुद ही अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार आने वाली नकारात्मक खबरों की बौछार जो है वो आपके जीवन के प्रति पॉजिटिव साइड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को कमज़ोर कर सकती है। जी हाँ, डिजिटल डिटॉक्स आपको ये अलगाव और इसमें जो है आपको एक राहत ये भी दे सकता है कि आप दुनिया के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए आवश्यक रहें। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के में कई सारी, जब हम किसी अनजान लोगों से बातचीत करने में अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं, ऐसे में अगर सोशल डिटॉक्स के माध्यम से जो है हम हमारे करीबी दोस्त या हमारे जो रिश्तेदार हैं या हम कहें कि जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ हमारा जो समय व्यतीत करेंगे, तो वो हमें हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे कई सारे झगड़े को भी बढ़ावा देते हैं, जिन्हें जो है जिनका कोई भी अंत नहीं होता है। ऑफलाइन अधिक समय बिताने से आपको अजनबियों के साथ गुस्से भरी बातचीत करने के बजाय दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत करने का महत्व भी समझ में आता है।

दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ऐसे में एकदम से सोशल डिटॉक्सिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। धीरे धीरे उपयोग कम करें। यदि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी समय बिता रहे हैं तो अचानक से पूरी तरह से बंद करना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में अपने लिए एक लंबी समय सीमा निर्धारित करें, फिर हर सप्ताह इस सीमा को धीरे धीरे आप जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के इस्तेमाल का समय जो है वो तय करें। दिन का एक निश्चित समय चुनें, जैसे कि काम से पहले या लंच के ब्रेक के दौरान, या फिर केवल उसी समय सोशल मीडिया का उपयोग करें जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्री हो। यदि आप दिन का निर्धारित समय चूक जाते हैं तो आपको कल का इंतज़ार भी करना चाहिए। साथ ही साथ एक समय में एक ही स्क्रीन के नियम का पालन करें। जी हाँ, हम कई जगह देखते हैं कि आजकल जो है टीवी, फ़ोन और लैपटॉप्स ये सब जो है एक साथ ही चलते रहते हैं। तो अपना अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अपना फ़ोन बंद कर दें, या फिर कम से कम उसे किसी दूसरे कमरे में रख दें। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसे रोकें और अपना लैपटॉप बंद कर लें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो करके आप जो है सोशल डिटॉक्स में अपनी कुछ समय के लिए शांति ज़रूर पा सकते हैं।

और दोस्तों, इन्हीं बातों और गीतों के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत

0: ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और

0: किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद एमआईएस के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रूपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं

0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

0: इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
0: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
0: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing, and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
1: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception as truly unforgettable. Braving that winter chill, members of the Indian diaspora gathered in large numbers outside the Prime Minister's hotel, greeting him with chants of Bharat Mata Ki Jai and Modi Modi. The welcome also featured cultural performances by local artists. The Prime Minister also praised the Australian India Orchestra for its rendition of Maa Tujhe Salaam, saying the performance reflected the role of music in strengthening people-to-people ties between the two countries. The centre has approved the procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर एक नए दिन एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं।
1: और जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं बहुत सारे लोग, यानी हम आपका परिचय करवाते हैं हमारी सार्थक टीम से।
0: श्रोताओं, एचपीटी ट्रांसमीटर पर हमारे साथ जुड़े हैं पारसपुरी गोस्वामी और प्रकाश पवार।
1: और दोस्तों, कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं विक्रम सिंह भाटी। और कंसोल पर है आकांक्षा वैष्णव और नेमीचंद। हमारे इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करता है राजेश लामरोड। और इन सभी के साथ मैं कविता पवार
0: और आपसे मुखातिब गुलनाज खान। स्वीकार कीजिए हम दोनों की तरफ से नमस्कार।

खूब सारी जानकारियाँ, कहीं साहित्य की नर्म पंक्तियाँ तो कहीं इतिहास के पलटते हुए पन्ने और सुरों की गलियों से गुजरते हुए हम तय करेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: श्रोताओं, हर दिन अपने भीतर कुछ यादें समेटे होता है, कुछ ऐसी जो हमें प्रेरणा देती हैं, कुछ ऐसी जो हमें ये सीख देती हैं कि क्या गलतियाँ हो गई, और कुछ ऐसी जो याद जब जब आती हैं तो हम और जोश में आ जाते हैं कि हमारा जो मानव इतिहास है वो इतना स्वर्णिम है और आगे आने वाला वक्त जो है वो भी उतना ही सुनहरा हो।
1: जी, और इन्हीं इतिहास के पन्नों को हम बगैर भूले रोज पलटते हैं ताकि ये ताज़ा तरीन रहे और हमारा आदर्श बन पाए।
0: तो चलिए आज भी इतिहास के पन्ने पलटते हैं, और 1810 में आज ही के दिन नेपोलियन ने पहले फ्रांसीसी साम्राज्य के हिस्से के रूप में डच राज्य पर कब्जा किया था। आज ही के दिन साल 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज के दिन ये घोषणा ऐतिहासिक कासा हिस्टोरिका डी टुकुमान में हुई थी, जो आज एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। ये दिन आज भी अर्जेंटीना के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: और बात करते हैं 1868 की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 14वां संशोधन लागू किया गया था, जिससे सभी को नागरिकता

0: और कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया जा सके।
1: १८१९ में आधुनिक सिलाई मशीन के आविष्कारक एलियास होव जूनियर का जन्म हुआ था आज के दिन। 1846 में सिलाई मशीन के एक महत्वपूर्ण डिजाइन का उन्होंने पेटेंट प्राप्त किया था। उनकी इस मशीन में सुई की नोक पर छेद यानी आई पॉइंटेड नीडल थी और लॉक स्टिच प्रणाली का उपयोग किया गया था, जिसने मशीन की सिलाई को तेज और विश्वसनीय बना दिया था।

0: और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इतिहास की बात को कंटिन्यू करते हैं। 1875 में भारत के सबसे पुराने शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आज ही के दिन हुई थी दोस्तों। इसे शुरुआत में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था और इसे प्रेमचंद रायचंद ने अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर बनाया था। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला और पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
1: अठारह सौ 75 में ही अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में प्राकृतिक गैस के एक कुएं से गैस को पाइपलाइन द्वारा उद्योग तक सफलतापूर्वक पहुंचाने की परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी। बाद में ये गैस के व्यावसायिक उपयोग और पाइपलाइन से आपूर्ति की दिशा में विकास का आधार बनी। श्रोताओं, 1877 में पहली विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें एकमात्र प्रतियोगिता थी पुरुषों की सिंगल्स, जिसमें हेरोविन रैकेट प्लेयर स्पेंसर गोर ने इसे जीता था और ये 9 से 19 जुलाई तक आयोजित की गई थी।

0: श्रोताओं, इतिहास के पन्ने पलटते हुए अब बात करते हैं 1944 की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा से भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। श्रोताओं, ये उनके सबसे प्रेरक और ऐतिहासिक संबोधनों में माना जाता है।
1: और दोस्तों, बात करते हैं 9 जुलाई 1951 की। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आज ही के दिन 1951 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रकाशित और प्रस्तुत की गई थी। ये योजना आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर 31 मार्च 1956 तक लागू रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना, ताकि देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सके। ये योजना हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के एन राज ने इस योजना का मसौदा तैयार किया।
0: श्रोताओं, 1963 में नीदरलैंड के ग्रोनिकन गैस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की पुष्टि हुई थी। इस खोज ने यूरोप के ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा दी और प्राकृतिक गैस के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया था।

0: श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ते हैं। 1972 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था आज के दिन।
1: और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 9 जुलाई 1991 यानी आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका पर लगा तकरीबन 21 साल पुराना प्रतिबंध हटाकर उसे ओलंपिक खेलों में दोबारा हिस्सा लेने की आधिकारिक अनुमति दी थी। इसके बाद इस देश ने 1992 के बार्सिलोना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 साल के अंतराल के बाद वापसी की थी। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 1960 में आखिरी बार हिस्सा लेने के बाद देश को रंगभेद नीति के कारण बाहर कर दिया गया था।

0: साल 2002 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो मकेकी इसके पहले अध्यक्ष बने थे और इसी साल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया था। साल 2004 में एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने के मकसद से अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया था और वो खास दिन भी आज ही का था। साथ ही साल 2008 में ईरान ने लंबी और मध्यम दूरी तक प्रहार क्षमता वाले 9 प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया था आज ही के दिन।
1: सूडान एक जनमत संग्रह के बाद अलग देश बन गया था।
0: जी हाँ, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। साल 2005 में सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच शांति समझौता हुआ था। उसके बाद दक्षिणी सूडान को एक देश के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 2011 में जनमत संग्रह के बाद रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना। विश्व को एक नया नवेला देश मिला। अफ्रीका का ये 54वां देश था जो कुछ दिनों बाद दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बन गया। ये व्यापक मान्यता वाला सबसे हाल ही में बना नवनिर्मित संप्रभु राज्य बना। दक्षिणी सूडान को सबसे पहले सूडान ने अपने पड़ोसी देश के रूप में मान्यता दी थी।

0: कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया, कहा पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के माध्यम के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना और प्रदेश में मॉनसून के अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार, आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: सीईओ फोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यापार कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों पक्षों के 200 से अधिक सीईओ उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मेलबर्न

0: में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे होगा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा।
1: ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और स्वस्थ फसलों का उत्पादन संभव होगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है और बड़ी आबादी की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों तथा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की बड़ी उपलब्धि है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और ISA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा जिससे बिजली की मांग का बेहतर आकलन और उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की गई है। इसके लिए झालाना में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन शहर में कचरा संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा।
2: वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लगकर वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करे, किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए।
0: कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने सवाईमाधोपुर में पांचना बांध और नहरी जल प्रवाह को लेकर किसानों और आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। डॉ मीणा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और भड़काऊ संदेशों से सावधान रहने तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर विश्वास करने का आग्रह किया है।
3: मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं लें और सोशल मीडिया पर

0: संकल्प लाभ कर रहे हैं उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूं, सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता।
1: मॉनसून के प्रदेश में अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार हैं। 11 जुलाई से एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। आज कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है, कहीं कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर और झालावाड़ में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और फलौदी को छोड़कर सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 22.9 मिलीमीटर बरसात उदयपुर के डबोक में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना लिस्ट जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। और प्रदेश में मॉनसून के अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में फिर से स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्यनगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और श्रोताओं, आज हम एक खास मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत खास है क्योंकि ये वक्त की नज़ाकत भी है और जिस तरह से हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सतर्कता कितनी ज़रूरी है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। साइबर अपराध के नवीन तरीके और डिजिटल युग में सुरक्षा के उपाय, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले आपकी नज़र करते हैं ये गीत, क्योंकि आज का जो ये बातचीत का सिलसिला है ये बहुत खास होने वाला है। ये खास बात है, बड़े ही काम की बात है। तो आज नमस्कार कार्यक्रम में काम की बात और खास बात को हमने जोड़ दिया है और आपके लिए ये खास जानकारी हम लेकर आए हैं। पहले ये गीत सुनिए और उसके बाद इस जानकारी से आप बहुत कुछ सीखेंगे।

ये आवाज आपने शहर पे जरूर सुनी होगी, जो क्राइम करते हैं अपराधियों के लिए अलार्म है और जो मदद मांगना चाहते हैं उनके लिए एक राहत है। जी हाँ, ये है हमारी पुलिस।

0: हमारी भारतीय पुलिस हमारी सुरक्षा में हमें जागरूक करने के लिए और हर जगह हमारी रहनुमाई करती है। पुलिस वाले को देखकर हम राहत महसूस करते हैं। जी हां, आज आप एक पुलिस वाले की आवाज सुनकर यकीनन राहत महसूस करेंगे। बहुत ही खास विषय को लेकर आज हम आए हैं। आज पुलिस वाले हमें बताएंगे कि इस डिजिटल युग में आप सुरक्षित कैसे रहें। जी हां श्रोताओं, साइबर अपराध के नवीन तरीके और डिजिटल युग में सुरक्षा के उपाय बहुत सारे हैं, जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। तो इसी विषय पर हमने आज बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है सब इंस्पेक्टर पन्नाराम जी को। थाना प्रभारी हैं पुलिस थाना फालना जिला पाली में। आप एक अनुभवी पुलिसकर्मी हैं। आपको सन 2012-13 में यूनाइटेड नेशंस पीस की पिंग के साइप्रस शांति मिशन में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन मेडल से सम्मानित किया गया था। साल 2002 में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा प्रतियोगिता में रजत पदक और साल 2008 में स्वर्ण पदक से आप सम्मानित रहे हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता से संबंधित अनेक जन जागरूकता कार्यशालाओं का आपने सफल आयोजन किया है। आपकी सहभागिता रही है और इसमें तकरीबन आपको 10 साल का अनुभव है। सब इंस्पेक्टर पन्नाराम, आपका हम अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मैम, और सबसे पहले मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि वो मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब।
0: पन्नाराम जी, आपकी पेशेवर दक्षता और योग्यता को देखते हुए सामाजिक हित में आपसे जानकारी हासिल करने के मद्देनजर आप अगले 30 से 35 मिनट तक स्टूडियो अरेस्ट में हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
1: ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है जब जनता के हित के लिए हमें कोई आप जैसे लोग, अनुभवी लोग अरेस्ट करते हैं। थैंक यू मैम।
0: जी, साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता में आपके अनुभव को देखते हुए हमने जनहित में सवालात की एक चार्जशीट तैयार की है। आपको हमारी शंकाओं का समाधान पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता

0: उदाहरण सहित और वास्तविकता के साथ देना होगा।
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये हमारे लिए बेहद खुशी का विषय है कि इसके लिए जनता बड़ी लाभान्वित होंगी और इसके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, इस वक्त आप कैमरे की नजर और माइक की संगत में हैं। आपसे इस बातचीत को मॉनिटर करते हुए हमारी नमस्कार की टीम मुस्तैद है और इस तमाम इंटरव्यू पर ध्यान लगाए हुए हैं प्रोड्यूसर राजेश लामरोड। और सवालात की चार्जशीट से आपको मैं रूबरू करवाऊंगी और कंसोल पर हैं नेमी चंद और हमारे साथ पूरी नमस्कार की टीम। और चार्जशीट प्रस्तुत करती हूँ, आप तैयार हैं हमारे सवालात के लिए?
1: बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ ही। मेरा राजस्थान पुलिस संगठन भी इसके लिए हरदम हर हमेशा तो तैयार रहेगा मैम।
0: अपना राम जी, कहीं ना कहीं जब डिजिटल अरेस्ट में किसी को लिया जाता है तो कुछ इसी तरह का खौफ का माहौल भी पैदा किया जाता है कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। इस समय आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो आज हमने एक पुलिसकर्मी को स्टूडियो अरेस्ट किया है और ये पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए इस पूरे जो वक्त की जो अवधि है उसमें हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज के वक्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, तो किस तरह के साइबर अपराध आजकल हो रहे हैं?
1: मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये साइबर क्राइम होते क्या हैं।
0: जी
1: लोग सीधा सा ये समझ लेते हैं कि हैकिंग करना कंप्यूटर, ये साइबर क्राइम है। जबकि मैं एक बहुत ही सिंपल शब्द में, अर्थ में बताता हूँ, इसको परिभाषित करता हूँ ताकि ये लोग समझ जाएं कि साइबर क्राइम है क्या। देखा, एक्चुअली क्या देखा जाए तो सबसे पहले चोर चोरी करते वक्त, डकैत डाका डालते वक्त अपनी टेरिटरी में प्रवेश करते थे, किसी लोगों के घर में घुस जाते थे। तो अब उनको इस चीज़ों की फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि आपका रास्ता अपनाते हैं, आपके भय का और आपके लालच का। ये दो रास्ते हैं जिनके रास्ते से ये जो अपराधी हैं आपके बैंक तक, आपके पॉकेट तक, आपके घर तक, यहाँ तक कि आपके पूरी परिवार को बर्बाद करने के लिए भी ये उपयोग में ले सकते हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ तक। तो ये इस जो ये टेंडेंसी है मोबाइल और कंप्यूटर, इनके थ्रू आपके बैंक में डाका डालना, बैंक से लूटना, पैसे लेना, धोखाधड़ी करना, वित्तीय घाटा पैदा करना, ये सारे जो हैं वित्तीय नुकसान पहुंचाना, ये सारे मतलब साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसे ही साइबर क्राइम कहते हैं।
0: जी, तो ऐसे में इनका एक टारगेट भी रहता होगा कि किस तरह लोगों को हमें इसका निशाना बना है। और आज के टाइम में जो अपराधी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो उनका जो टारगेट है वो भी एक वाइड रेंज का होता होगा कि किन लोगों को हमें इसका निशाना बनाना है। और एक पुलिसकर्मी हैं आप, तो उनकी मानसिकता को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता रहती है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। आज वास्तव में आज लगा बहुत अच्छी तैयारी करके आए।
0: जी, शुक्रिया
1: तो
0: जी।
1: ये
0: चार्जशीट तैयार की है ना, बस उसी तरह से मेहनत की है जैसे आप किसी अपराधी के लिए मेहनत करते हैं। हमने तो आज को आपको मेहमान स्वरूप बुलाया है। जी
1: दरअसल में क्या होता है कि समाज में आजकल डिजिटल जमाना है, तो सरकार चाहती है कि लोक कल्याणकारी सरकार ये चाहती है कि जो पीड़ित को या जरूरतमंद को कोई लाभ पहुंचाना है तो वो जल्दी पहुंचे, तो इसके लिए वो डिजिटल युग का सहारा लेते हैं। तो इसके बीच में लूप होल का हमेशा प्रयोग किया जाता है इनके अपराधियों द्वारा कि कमजोरी कहाँ रह गई है, जनता भ्रम कहाँ पैदा हो सकता है जनता में। तो उस भ्रम को ये क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं और उनको लेकर सीधा पहले तो फिशिंग के जरिए या विशिंग के जरिए उनसे ये डाटा ले लेती है, या फिर उसके बाद में या तो लालच दिया जाता है या भय पैदा किया जाता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तिगत श्रेणी को वो टारगेट करते हैं। जो मिला, विशेष करके देखा गया होगा कि बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको टारगेट कर दिया जाता है, रिटायर्ड पर्सन को किया जाता है, या जरूरतमंद होते हैं जैसे लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो कारखानों में फैक्ट्रियों में कार्य काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, या फिर स्टूडेंट्स। एक आज में वो बहुत ही कबीरदास जी जो संत शिरोमणि थे,
0: जी
1: उनकी वो जबकि उनकी 15वीं शताब्दी का काल था, आज भी वो प्रासंगिक है। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, बहुत शानदार लिखा है, मैं आपको इसे जनता को श्रोतागणों से इसको अवगत कराना चाहूंगा कि ध्यान में रखें।
0: जी
1: उन्होंने कहा कि माखी गुड़ में गढ़ी रही, माखी गुड़ में गढ़ी रही, पंख रहे हो लिपटाए, हाथ मड़े सिर धुने, लालच बुरी बला है।
0: क्या बात है, बिल्कुल, और आज बहुत सार्थक है ये बात।
1: तो ये मैं उनको प्रासंगिक इसलिए मानता हूँ।

0: कि हमेशा जहां कहीं इतने मैंने भी देखे हैं, मैं सैकड़ों इंसिडेंट में देख चुका हूं, अधिकतर उसका लालच था। तो आपको कोई लालच दिया जाता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें, 10 दिन में दुगने हो जाएंगे, 5 दिन में दुगने हो जाएंगे, महीने में दुगने हो जाएंगे, तो वो आपके लिए गुड़ है और आप उसके लिए मक्खी हैं।
1: जी, तो जैसा कि अभी हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन निवेश की भी अभी आपने बात की है कि वो हमें थोड़ा सा लालच देते हैं और फिर उस लालच में हम फंस जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न है और जनता को और श्रोतागणों को इसमें जागरूक होना चाहिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। हमें गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को फिजिकली उसको टच करना पड़ता है, उसको कारण बताने पड़ते हैं कि आपको इसलिए अरेस्ट किया है।
1: जी
0: फिर उसके बाद विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना पड़ता है और कारण बताने पड़ते हैं हमने इसलिए अरेस्ट किया है। तो पहले बात डिजिटल अरेस्ट, ये क्या करते हैं लोग, जो अपराधी लोग हैं वो सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट में व्यक्ति को भय दिखाते हैं। भय नाना प्रकार से दिखाते हैं कि व्यक्ति में भय कैदा कैसे किया जाए। तो उसको कानून का भय सबसे बड़ा दिखाते हैं कि
1: अच्छा
0: आपके अकाउंट का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में हो गया, जिसको कहते हैं आपके आतंकवादियों के पैसों को
1: जी, आपका गलत इस्तेमाल
0: फंडिंग
1: हो
0: कर दिया
1: गया।
0: आपने,
1: जी,
0: आपके अकाउंट का फंडिंग में यूज हो गया, या फिर कहते हैं आपका पार्सल पकड़ा गया है एयरपोर्ट पर, वहां पर इसमें एनडीपीएस का माल है, तो एनडीपीएस का नाम सुनते ही व्यक्ति थर थर कांपने लगता है, 20 साल की सजा होती है। तो उसको फिर आखिर में बात आती है कि आप इसको सलटाना चाहते हैं क्या, तो वो दूसरा तरीका अपना लेते हैं कि हाँ साहब सलटाना चाहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से कहते हैं कि अब यहां इतने पैसे दे दो, लाखों से शुरू होता है, जहां थम जाए वहीं सही, लाखों से शुरू, यहां तक कि पिच निचोड़ के रख देते हैं, उसके परिवार पूरा बर्बाद होता हो जाता है। ऐसे ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहां पे जमीन बेचकर उसको पैसा दिया गया अपराधियों को।
1: जी,
0: तो
1: और
0: ये
1: वो
0: होता है
1: वक्त,
0: डिजिटल अरेस्ट।
1: जी वक्त का भी ख्याल रखते हैं कि दोपहर का वक्त है, महिलाएं घर में अकेली होंगी, बुजुर्ग हैं, तो फिर फोन करते हैं और बाकायदा वो उस अकाउंट को देखते रहते हैं कि किस तरह से इस पे इनको अपने शिकंजे में लेना है। ये तो बहुत ही दिमाग लगाने वाली बात है। मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि ये जो साइबर अपराध की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी कोई भौगोलिक सीमा होती है? और जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी को अरेस्ट करने के लिए आपको फिजिकली उसके पास जाना पड़ता है, तो दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में बैठे हुए जो अपराधी होते हैं, उनसे हमारी पुलिस कैसे निपटती है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि जब साइबर अपराधी कोई अपराध करता है उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी बैठा कहीं पर भी अपराध कर सकता है। हम राजस्थान में बैठे हैं और नॉर्थ ईस्ट से बैठा हुआ व्यक्ति हमारे साथ अपराध कर सकता है, अमेरिका में बैठा हुआ भी हमारे साथ अपराध कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने अभी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे 1930, इमीडिएट आप उस पर 1930 पर कॉल कर देते हैं तो काफ़ी कुछ गुंजाइश बच जाती है कि पैसे रुक जाएं।
1: 1930।
0: 1930।
1: जी
0: दूसरा वेब पोर्टल भी जारी किया है, cybercrime.gov.in, वहां पर जैसे ही आपकी कंप्लेन लॉग हो जाती है तो सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस है, दूसरा बैंक और NBFCs, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, सारे एक प्लेटफॉर्म पे सारे के नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो इमीडिएट उन कॉल को उन अधिकारियों को कॉल करके वो पैसा फ्रीज करवा सकता है, पैसा रुकवा सकता है। तो भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स चला रखी है। राजस्थान सरकार ने तो इससे भी ज़्यादा हमने काम किया है, जो फर्जी अकाउंट्स यूज हो रहे हैं तो फर्जी अकाउंट्स को भी हमने टारगेट किए हैं, उनके खिलाफ भी संगठित अपराध के रूप में परिभाषित करते हुए उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है, जो छोटी छोटी राशि में अकाउंट बेच लेते हैं। जो मुख्य रूप से जो अपराधी होता है वो तो बच जाता है बेचारे, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, हालांकि कभी कभार 500 रुपये में अकाउंट जिसने दिया है वो भी कानून की दृष्टि से एक अपराधी माना जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो फैसिलिटेट कर रहा है अपराधी को।
1: जी, देखिए वक्त इस तेज़ गति के साथ में बदल रहा है कि नित नए अपराध के तरीके आ रहे हैं। जिस तरह से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसी तरीके से अपराधियों के भी नए नए तरीके आ रहे हैं। और आज के इस डिजिटल युग में AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से अपराधी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी बात

0: करेंगे और हम बहुत ही भावुक किस्म के लोग हैं, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी एक साथ नहीं देंगे, हम आपको बीच में पानी और खाना मतलब गाना सुनवाते रहेंगे, तो आपकी पसंद का गीत आपकी नज़र करते हैं।
1: हाँ मैम, एक बहुत है, आज वो संजीव कुमार जी का गाना है, उनका कोई आज इवेंट भी है, तो उनका
0: जी
1: एक गाना
0: जी
1: है,
0: जी
1: तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: गाना हमारे श्रोता गणों को सुना लीजिए, तो वो ही हमारे इस आवाज़ से परेशान नहीं हो जाए।
0: जी संजीव कुमार जी को आज हम खास तौर पर याद भी कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती है। बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं और ये गीत आपने श्रोताओं को सुनवाया है और श्रोता भी दिल ही दिल में ये कहेंगे कि जी पुलिस वालों से हमें कोई शिकायत नहीं, आप हमारे सुरक्षा में हैं।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।
2: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का हम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में स्वागत करते हैं। बेहद खूबसूरत ये गीत हमने नज़र किया पन्ना राम जी के। आप सब इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी, पुलिस थाना फालना, जिला पाली में आप ऑन ड्यूटी हैं और इस समय हमारे स्टूडियो अरेस्ट में हैं और हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय पर। और अभी हमने जैसा कि जिक्र किया कि वक्त इतना तेज़ी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या साइबर अपराधियों द्वारा जो ये एआई का इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह का होता है और ये कितना नुकसानदायक है और ये कहां तक हमको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है?
3: थैंक यू मैम। दरअसल में शुरुआत अभी देखा जाए तो एआई

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में ही है कि अर्थ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान तो है लेकिन कृत्रिम है, मीन्स बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों का दिमाग इसमें यूज लिया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतियां हैं, जनता के लिए भी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से डर के हम घर बैठ भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता हम कोई एआई का उपयोग नहीं करें, या डिजिटल युग में हम इस डिजिटल जमाने का उपयोग नहीं रहे, हम पीछे रह जाएं, लेकिन हमें इन चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अवेयर भी रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। अपने एक मारवाड़ी में बहुत सुंदर कहावत है कि
1: जी
0: जागते हूँ ताक तो बतो रहा करे, मीन्स अलर्ट व्यक्ति है वो अवेयर व्यक्ति से विन कर सकता है। तो
1: जी
0: हमें अवेयर रहने के साथ साथ अलर्ट भी रहना है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में जो अपराध हो रहा है, तो एक होता है AI डीप फेक वीडियो,
1: जी
0: जो व्यक्ति की हूबहू शक्ल की वीडियो बना दिया जाता है और ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है, व्यक्ति को भयभीत करने के लिए, चाहे उसकी फेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी महिला किसी पुरुष इत्यादि को भेज दिया जाता है कि या तो इतने पैसे जमा कराओ नहीं तो ये वीडियो मैं वायरल कर लूंगा। तो वायरल वो वीडियो दूसरे की नज़रों में यदि गहनता से नहीं देखा जाए तो वो हूबहू नजर आता है।
1: जी
0: परखना है तो फिर देखना है कि उसकी जो बोल रहा है, उसकी भाषा है या उसकी बोली है, उसकी तारतम्यता और होठों की जो मूवमेंट है, उन दोनों को अच्छी तरह से देखते हैं तो समझ में आता है। अदरवाइज वो 90% लोग विश्वास कर ही लेंगे। तो ये हमारे लिए चुनौती है। जनता से या श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा कोई वीडियो सामने आ जाए अपने परिचित का, दोस्तों का, स्वजन बंधुओं का, तो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। दूसरा है वॉइस क्लोनिंग, बड़ी बड़ी खतरनाक अपराध है ये। कई बार ऐसे सुनते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, कांप जाते हैं।
1: जी, रोंगटे खड़े हो
0: एक
1: जाते
0: सच
1: हैं।
0: में
1: डीप फेक वीडियो बना रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग कर रहे
0: वॉइस
1: हैं।
0: क्लोनिंग, वॉइस क्लोन में हम आपको बताएं तो ये है कि किसी बच्चे का, आपका 5 सेकंड का वो ऑडियो कहीं से ले लिया,
1: जी
0: आवाज हूबहू, फिर वो कितनी भी ऑडियो बना लिया जाए, यदि बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को भेजेंगे आवाज, बच्चा स्कूल चला गया है, बच्चा बाहर है, पेरेंट्स के पास नहीं है, तो तुरंत वो भेजेंगे, वो बच्चा रो, बच्चे की रोने हुई आवाज आएगी, मम्मी बचा लो, पापा बचा लो। मम्मी और पापा सोचते हैं वास्तव में वो बच्चा ही है,
1: जी
0: तो अनावश्यक रूप से तुरंत हड़बड़ी में पैसे जमा करवा देते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी उनके साथ हो जाती है। तो ऐसा होने पर तुरंत हड़बड़ाहट से बचें, परिचित को इन्फॉर्मेशन करें और जहां बच्चा गया है तो वहां पर जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वहां पर सूचित करें कि बच्चा हमारे उपलब्ध, वहां पर बच्चा है, उपस्थित है या नहीं है। तो इन आंख बूंद के इन चीजों पर विश्वास नहीं करें, ये हमारे लिए चुनौती है। चुनौती है बेहद, हमें खुशी खुशी स्वीकार है, हम निपटेंगे। राजस्थान पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि इन चुनौतियों से हार जाए।
1: जी एक और सवाल है कि OTP, UPI और QR कोड से जुड़े भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो इनसे बचने के लिए आम जन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न लिया मैम। UPI से पैसा ट्रांसफर करने के लिए हमें पिन कोड की जरूरत रहती है। यदि कोई पिन कोड पूछ रहा है हमें, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, हमारे साथ वो फ्रॉड करने जा रहा है। OTP कभी किसी के साथ नहीं करें, शेयर नहीं करें, क्योंकि बैंक तक भी OTP अपने से नहीं पूछ सकता। तीसरा प्रश्न आपने दिया QR कोड का।
1: जी
0: हमेशा लोग यहाँ भ्रम में पैदा हो जाता है कि QR कोड क्या करें। हमेशा ध्यान रखें कि QR कोड आप स्कैन करने के लिए कहा है तो आपकी जेब ढीली करनी ही है, तो QR कोड को स्कैन नहीं करना है। यदि कोई कहता है QR स्कैन कोड करो, आपके खाते में पैसा भेज रहा हूँ, उन्होंने कहना ऐसा तो संभव नहीं है, तो तुरंत उस प्रश्न को टाल देना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि आप अलर्ट हैं तो आपके साथ वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आप उसको डांटेंगे, भाई ये तो आप मेरे साथ जालसाजी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो उतनी उस चोर की हिम्मत नहीं होती है कि वो दोबारा आपको कॉल करेगा।
1: बिल्कुल, उनको पता चल जाता है कि आप
0: हाँ,
1: जागरूक हैं और उनके उस शिकंजे में नहीं
0: हिम्मत तो
1: फंस रहे।
0: आपको करनी पड़ेगी।
1: जी
0: एक हमारे राजस्थान में खिड़िया साहब हुए थे, एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवि,
1: जी
0: उन्होंने एक नीति से संबंधित सोरठे लिखे। राजस्थानी में 200 सबसे ज्यादा खूबसूरत सोरठा माना जाता है, तो राजिया का सोरठा लिखा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, आदर करे ना कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। तो
1: जी
0: हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, अवेयर होना पड़ेगा
1: जी
0: आपको।
1: और अकाउंट से रिलेटेड जो हमारे साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो मजबूत पासवर्ड बनाने और उसे सुरक्षित रखने का भी सही तरीका आप हमें बताएं, और ये भी बताएं

0: हैं कि क्या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ज़रूरी है, उसे रखना चाहिए?
1: मैम, आपका आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है आपका प्रश्न है। इसमें कई सारे एक साथ में आपने लपेट लिए।
0: पुलिस कर्मी साथ में बैठे हैं तो देखिए हमें अब लपेट के ही पूछना पड़ता है। जी
1: हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी, चाहे आप वित्तीय लेन देन कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, कहीं पर भी, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल फोन नंबर नहीं होना चाहिए। मैंने 90% जो केसेस देखे हैं उसमें ये देखा, यदि किसी का ईमेल हैक हो गया तो उसका प्रथम कारण ये था कि उसका मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड था, बड़ी
0: जी
1: विडंबना है। दूसरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ,
0: जी
1: डेट ऑफ बर्थ डाल दी जाता है। तीसरा,
0: ज्यादातर
1: उस
0: ऐसा करते हैं।
1: अक्सर ऐसा करते हैं
0: जी
1: ताकि वो भी खुद नहीं भूले, इसका कारण यही भी होता है।
0: जी
1: तो दर्शक जो श्रोतागण हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, ध्यान से सुने इस बात को कि आपका जितना मजबूत पासवर्ड है तो वो सुरक्षा कवच इतना आपका मजबूत है। आप पासवर्ड डालते समय अल्फा न्यूमेरिकल रखें, अल्फा अल्फा में ABCD वाला, और न्यूमेरिकल 1 से 0 से लगाकर 9 तक का उसको मिक्स करें।
0: जी
1: फिर उसमें जो अल्फा न्यूमेरिकल है उसमें 1-2 करेक्टर हैं, वो उसको कैपिटल रखें ताकि वो जज नहीं कर पाए कि कौन सा कैपिटल किया। आप ध्यान रखें कि मैंने कहां से पहला, लास्ट, बीच वाला, तीसरा, चौथा, वो न्यूमेरिकल जो नंबर है, अल्फा है, वो मैंने अपर केस में डाला है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पेशल करेक्टर डालें उसमें, जैसे हैश, डॉलर, इस प्रकार के जो होते हैं वो डालिए बीच में, और इससे आपका पासवर्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि वो तोड़ नहीं पाएगा जो हैकर्स हैं।
0: जी
1: दूसरा, आपने प्रश्न किया कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये ठीक उसी प्रकार है जो बैंक अपने ग्राहकों की जो धनराशि होती है वो किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, मतलब डबल लॉक। टू फैक्टर मीन्स डबल लॉक, एक तो आपका पासवर्ड हो गया, बाय द वे किसी भी कारणवश, चाहे SMSing की वजह से, फिशिंग की वजह से आपका पासवर्ड उसने क्रैक कर लिया, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेकेंड जो फैक्टर है वो आएगा OTP,
0: जी
1: कि आपका OTP आना चाहिए आपके मोबाइल पे। तो वो आपका OTP, यदि आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपको पहले ही बता चुका हूं कि OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो वो OTP आपने शेयर नहीं किया तो आपके साथ ये वित्तीय धोखाधड़ी या फ्रॉड, ये साइबर क्राइम आपके साथ होने से काफी आप बच जाएंगे और संभावना बहुत गौण रह जाएगी।
0: जी बचाव के तरीके पर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पब्लिक वाईफाई पर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह का ख्याल रखना चाहिए?
1: आपने सुना होगा कि बहुत पुरानी कहावत है, मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन। ये
0: जी
1: दरअसल में यहां पर उपयोग नहीं लेना चाहिए, यहां पर ये उपयोग में नहीं है, आज के युग में कतई नहीं है ये। आज दी इस लोकोक्ति को यदि कोई ले लेता है तो वो गलत है, वो मुफ्त का चंदन नहीं है, मुफ्त का वाईफाई है। वहां पर तो मैं तो आपसे श्रोतागणों को आपके माध्यम से हमारे जो विभाग है उसकी ओर से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि पब्लिक जो एरिया, डोमेन एरिया होता है, वहां पर वाईफाई का प्रयोग वित्तीय लेन देन में कतई नहीं करें,
0: जी
1: विशेष करके आपका डिवाइस जिसमें वित्तीय लेन देन किया जा रहा है उसमें भी कतई नहीं करें, क्योंकि वहां पर दूसरा एक राउटर लगाकर, वाईफाई लगाकर आपके डेटा जो फ्रॉडर्स है वो आपके चुरा सकते हैं। खास बात कि वित्तीय, बाय द वे, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो गई और आपको यूज में लेना पड़ा तो आप VPN का यूज करें, वहां पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐप आता है, उसके थ्रू करें, वहां से एक डेटा रूट होके जाता है तो वो आपके डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएंगे फ्रॉडर्स।
0: जी लेन देन के मामले में हम लोग भी एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और आप इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक और गीत आपकी नज़र करते हैं आपकी पसंद का।
1: जी, आप 14वीं का चांद हो, आज गुरुदत्त जी का जयंती है और वो आज दिन है उनका, तो वो आज हो जाए तो श्रोतागणों के लिए मेरी ओर से मुबारक हैं।
0: जी और इस मंच से हम गुरुदत्त जी को भी श्रद्धांजलि देते हैं, और बहुत ही उम्दा फिल्मकार रहे हैं, कमाल के अभिनेता थे, तो उनकी ही फिल्म का ये गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं।

0: जी श्रोताओं, आज हम खास विषय पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम साइबर जो क्राइम होते हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसे में हम जो क्वेश्चंस आपसे कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे आंसर हमें दे रहे हैं कि उससे हमें बहुत जानकारी भी मिल रही है। एक गोल्डन आवर होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको चंद मिनट मिलते हैं, और इसमें भी एक गोल्डन आवर होता है कि अगर आप किसी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो आपके पास एक निश्चित समय है। तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए, अगर कोई इस तरह के मामले में फंस जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया किया प्रश्न मैम आपने, और ये जनता वास्तव में इस अर्ज को नहीं जानती है। दरअसल में किसी व्यक्ति के साथ ये अनहोनी घटना, साइबर फ्रॉड, वित्तीय ठगी इत्यादि हो जाती है तो उसे चुप नहीं बैठना है। मालूम चलते ही तुरंत साइबर ठगी हो गई उसके साथ, इमीडिएट 2 घंटों के भीतर भीतर यदि वह पुलिस के पास पहुंच जाता है या 1930 पे कॉल कर लेता है, 1930 पे कॉल नहीं लग रहा है किसी कारणवश क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पूरा देश उस लाइन पर है, तो ऐसी कंडीशन में जो www.cybercrime.gov.in वहाँ पर तुरंत अपनी कंप्लेन लॉग करें, तो लॉग करते ही आपके 2 घंटों के भीतर भीतर यथासंभव अधि मैक्सिमम राशि आपकी बच सकती है। यहाँ एक ही बात है, जितना जल्दी आप जगेंगे उतना अधिक पैसा आपको वापस मिलेगा।
0: अच्छा,
1: गोल्डन आवर्स यही है।
0: अच्छा
1: जी, ये स्वर्णिम जो काल है उसका कहा है।
0: अच्छा,
1: स्वर्णिम काल यही है, विदिन 2 आवर्स, और आधे घंटे के भीतर तो अधिकतर पैसे क्या 99% वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कार्रवाई अच्छे से हो जाती है तो आधे घंटे में आपको पैसा भी मिल जाएगा, क्या बात है।
1: नहीं, पैसा आधा घंटे में
0: अच्छा,
1: नहीं मिलेगा, पैसे में टाइम लगेगा,
0: टाइम लगेगा
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: वो
0: पकड़ में आ जाएगी,
1: पकड़ में आ
0: जैसे
1: जाएगा डेटा, वो उसका पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा। आपको लीगल प्रोसीडिंग है उसको करना पड़ेगा, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू आपका पैसा मिल जाएगा।
0: जी, असल में हमें क्या है ना कि बहुत उम्मीदें करते ना कि हमारी शिकायत है तो जल्दी से समाधान होना चाहिए। श्रोताओं, 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह के डिजिटल अरेस्ट में हैं या साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। 1930 ये आपको डायल करना है। और पन्नाराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अगर किसी के साथ में इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसमें जो डिजिटल युग में हम कहते हैं सोचिए, परखिए और फिर क्लिक कीजिए, तो ये आदतें कितनी ज़रूरी हैं

0: और इसमें कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर।
1: वाह, बहुत खूबसूरत प्रश्न मैम आपका। और ये मैं केवल साइबर क्राइम को लेकर ही ये नहीं कहूँगा, व्यक्तिगत जीवन में भी इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन मीन्स हमारा यातायात जो सुविधा है, जो ट्रैफिक अवेयरनेस में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि हमेशा जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी ही दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं।

0: ही दुर्घटना को निमंत्रण देती है। तो ये वित्तीय फ्रॉड में भी इसी प्रकार है, पहले तो उसको जांचो, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी तर्कसंगतता परखो, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हाथों हाथ में लखपति बन जाऊं, क्या वास्तव में मुझे लॉटरी लग गई। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं है, कठिन परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति रातों रात लखपति या धनपति नहीं बना है। तो जिस प्रकार एक्सीडेंट में हम कहते हैं, रोड एक्सीडेंट में, कि स्टॉप लुक एंड गो, कहीं भी ऐसे जंक्शन में है तो आप सबसे पहले देखिए, रुकिए, देखिए, फिर उसके बाद में जाइए।
1: जी
0: हमेशा ट्रिपल ए को याद रखिए, हमेशा वहां पर, यहां पर भी और वहां पर भी, मतलब अलर्टनेस अवॉइड्स एक्सीडेंट। आप अलर्ट हैं, सतर्क हैं, तो आपकी दुर्घटना टल सकती है, चाहे वास्तविक रोड पे हो, चाहे जिंदगी की रोड पे हो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो कार्रवाई सारी करवाई जाती है, उसमें किसी तरह की कोई फीस भी देनी होती है, या ये सुविधा हमें एक नागरिक होने की हैसियत से मिलती है?
0: पुलिस संगठन हमेशा आपके लिए सेवार्थ कटिबद्ध है, हमेशा तैयार है, निशुल्क है। सरकार, लोक कल्याणकारी सरकारें हैं, और सरकार आपके लिए, हमारे जो सैलरी दे रही है वही आपकी फीस है।
1: जी,
0: आपको कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं रहती है।
1: सब इंस्पेक्टर पन्नाराम जी पुलिस रिमांड से अनजान नहीं है, और हम वक्त की डिमांड पर आपको ले चलते हैं अगले रैपिड फायर राउंड में, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, या जरूरत हो तो चंद शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं?
2: जी।
1: क्या किसी बैंक कर्मचारी को कभी भी ओटीपी बताना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं बताना चाहिए।
1: क्या क्यूआर कोड स्कैन करने से आपके खाते से पैसे कट सकते हैं?
0: कट सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको बचने के भी उपाय हैं।
1: जी, और आपने बताए हैं।
0: जी
1: क्या पढ़े लिखे और तकनीकी जानकार लोग साइबर ठगी का शिकार नहीं होते?
0: ये तो बिल्कुल गलत बात है। पढ़े लिखे आजकल हो भी रहे हैं, सबसे ज्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है, वो गुड़ है, उस गुड़ में आप बैठ गए तो कबीर जी की मक्खी की तरह आप भी वहीं धंसे रह जाएंगे।
1: क्या कम पढ़े लिखे और तकनीक ना जानने वाले लोग ही साइबर ठगी का शिकार होते हैं?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे भी हो रहे हैं।
1: क्या एक ही पासवर्ड को कई ऐप और वेबसाइट पर इस्तेमाल करना सुरक्षित है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सुरक्षित नहीं है।
1: क्या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाता है?
0: ये आपका सुरक्षा कवच है, बिल्कुल, टू फैक्टर ऑथेंटिक मजबूत कर बनाता है आपको।
1: क्या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है?
0: ये दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है।
1: क्या अनजान लिंक पर क्लिक करना साइबर खतरे को आमंत्रित करता है?
0: हाँ, यहाँ स्थिति आ बैल मुझे मार वाली हो सकती है।
1: क्या मुफ्त गिफ्ट, लॉटरी या नौकरी के लालच वाले संदेशों से सावधान रहना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं, तो वो कबीर जी की मक्खी वाली स्थिति अपनी भी हो जाएगी।
1: क्या सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग लेन देन करना सुरक्षित है?
0: बिल्कुल नहीं है मैम।
1: क्या साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने से मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है?
0: शत प्रतिशत अपना यही सुरक्षा कवच है, यहीं पर अपनी शिकायत पहले दर्ज करनी चाहिए, प्राथमिकता में 1930 होनी चाहिए।
1: क्या मोबाइल में एंटीवायरस या सुरक्षा अपडेट को नजरअंदाज करना ठीक है?
0: नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं,
1: क्या डीप फेक वीडियो देखकर तुरंत उस पर भरोसा कर लेना चाहिए?
0: नहीं करना चाहिए।
1: बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अभिभावकों को निगरानी रखना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, बच्चे भावुक होते हैं, इन पर निगरानी रखनी आवश्यक है। मनचाही चीजें, विशेष करके यहाँ अभिभावकों से, श्रोतागणों से मेरा निवेदन है कि जो चाहा, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, उनको स्टेटस इत्यादि पर नहीं लगाएं और सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें।
1: क्या मजबूत पासवर्ड भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए?
0: बिल्कुल आवश्यक है।
1: क्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई APK फाइल या ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए?
0: उस पर तो क्लिक भी नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। APK फाइल्स तकरीबन ग्रुप्स में आती है, उस ग्रुप्स में जो एडमिन है उनको सतर्क करना चाहिए कि इस प्रकार अपने ग्रुप में फाइल आई है, अपने सदस्यों को, तमाम सदस्यगण उनको बताएं कि हमारे एक थ्रेट आई है, इसको इमीडिएट हटाएं।
1: जी, अगर आपको चंद सेकंड का टाइम दिया जाए तो आपसे ये कहा जाए कि आपको पूरे देश के श्रोताओं को केवल एक संदेश देना है जिससे कि वे साइबर अपराध का शिकार होने से बचें, तो वो संदेश क्या होगा?
0: मैम, एक संदेश काफी नहीं है, ना काफी है।
1: जी, पूरी फाइल खोली जा रही है इस समय श्रोताओं आपको संदेश देने के लिए। जी
0: मेरा निवेदन

0: ने श्रोता गणों से कि आपकी तिजोरी की चाबी है वो अपराधी के पास, साइबर अपराधी के पास है नहीं। उसके दो रास्ते हैं जिनके थ्रू आपके बैंक में आते हैं, पहला आपका लालच, दूसरा आपका भय। ये दो उनके हथियार हैं।
1: जी
0: तो पहला इसके लिए कह रहा हूं कि मुफ्त के लालच से दूर रहिए, फर्जी कॉल के डर से मुक्ति रखिए, और नहीं तो फिर आप कबीर जी वाली मक्खी वाली स्थिति हो जाएगी। मूल मंत्र है, इसकी गांठ बांध लो। दुनिया में आज तक कोई भी बिना मेहनत के कोई धनवान नहीं बना है, और दूसरी कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती। दूसरा मूल मंत्र यह है कि आप पिन, जैसे आप यूपीआई का पिन और बैंक का ओटीपी और क्यूआर कोड स्कैन इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करें,
1: दोस्तों से भी नहीं।
0: दोस्तों से भी नहीं। तीसरा, हमेशा याद रखें आप सतर्क हैं तो सुरक्षित हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसको पहले सोचिए, परखिए, उसके बाद उसको क्लिक करिए। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मारवाड़ी में बहुत खूबसूरत कहावत है और वो व्यवहारिकता में लागू करोड़ी है कि जागते हूं ताक तो बतोया करे। तो आ चीज मुहावरे में जो लोकोक्ति कही है ये हमारे जीवन में डाल देनी चाहिए। और फिर भी आपके पास यदि कोई घटना हो जाए तो आपके बहुत प्यारे दोस्त और जवाबदेही दोस्त राजस्थान पुलिस को आप याद करिए।
1: जी, और उनसे दोस्ती बनाए रखिए।
0: बिल्कुल, उनसे दोस्ती बना के रखिए।
1: जी, सब इंस्पेक्टर पन्नाराम, थाना अधिकारी, पुलिस थाना फालना, जिला पाली, आज बहुत कीमती समय हमारे लिए आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम आपको स्टूडियो अरेस्ट से आज़ाद करते हैं। उस समाज में अब आप वापस जाने वाले हैं जहां पर आपके कंधों पर ये रैंक नहीं, इसके रूप पे जिम्मेदारी है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। आपको आकाशवाणी के इस मंच से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आपकी सेवा को सलाम करते हैं। और ये जज्बा हम सब में हो कि पुलिस और पब्लिक की दोस्ती कभी ना टूटे, ये दोस्ताना संबंध हमेशा बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैम, श्रोतागणों का, और आपका आभार कि राजस्थान पुलिस और पाली पुलिस को आपने ये मंच उपलब्ध करवाया। इस मंच के थ्रू आप श्रोताओं से रूबरू करवाया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रोतागणों के लिए, एक खूबसूरत हमारी दोस्ती के लिए, जनता और पुलिस, आम जन में विश्वास बना रहे, अपराधियों में भय बना रहे, तो इसके लिए डेडिकेटेड हमारा गाना है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये बजा दीजिए, श्रोतागणों को सुना लीजिए।
1: जी।

0: साथ छोड़ने की तो मर्जी हमारी भी नहीं है श्रोताओं, लेकिन समय जो है वो इजाजत नहीं देता कि अब हम साथ और बने रहें इस
1: लेकिन
0: प्रोग्राम में।
1: श्रोताओं, आप आकाशवाणी जोधपुर के साथ बने रहें और नमस्कार कार्यक्रम से गुलनाज खान
0: और
1: और
0: कविता को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में पहली लोक रचना सुनिए श्रोताओं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

0: लोक संगीत में अगली लोक रचना सुनिए श्रोताओं चंपा मेथी की आवाज में।
1: धरती माता सुवागिनी इंद्र जसो भरतार।

लोक संगीत में अगली लोक रचना सुने श्रोताओं, मोती खान की आवाज में।

0: इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत का पहला गीत सुनिए श्रोताओं, जुबिन नौटियाल की आवाज में।

श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला प्रोग्राम, फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजीगर से, जिसे गाया है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने। गीत के बोल गोरी कानपुरी के हैं।

श्रुतम फिल्म संगीत में अगला गीत हमने लिया है फिल्म खिलाड़ी से। आवाज़ें अभिजीत और अलका याग्निक की हैं। गीत के बोल अनवर सागर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म शिकारी से। इस गीत को गाया है कुमार शानू ने, गीत को लिखा समीर ने और संगीतबद्ध किया आदेश श्रीवास्तव ने।